0: कंफ्यूज्ड हैं इन सब चीजों को लेके कि नहीं भी पार्टिसिपेट करेंगे तो इसका मतलब हम मतलब नो ही बोल रहे हैं तो नहीं हम चाहते पर इसका मतलब ये है भी अगर नहीं आप पार्टिसिपेट करें तो इसका मतलब है आप रेफरेंडम को बूस्ट कर रहे हैं बेसिकली क्योंकि उन लोगों को लगेगा भी इनको इंटरेस्ट नहीं है जो लोग वहां जा रहे हैं वो लोग वहां पे जाके वोट डालेंगे और आप की नो हो जाएगी उसके अंदर आपको पार्टिसिपेट करना है ना कि उससे दूर भागना
1: ऐसे ही है ऐसे ही है राजेश भाई और बिल्कुल यही है कि इफ वी डोंट यूज अवर वोट देखें डेमोक्रेसी यही होती है कि राय आपकी क्या है ये थोड़ा सा हाँ अलबत्ता मैं जरूर कहूंगी कि थोड़ा सा यूनिक एंड मुनफरिद इसलिए है कि दिस टाइम द गवर्नमेंट हैज गिवन सम क्वेश्चंस तो इस वजह से राय लोग ज्यादा डर गए कि यार ये क्वेश्चंस क्या हैं so that is why the curiosity is in that lekin hum sab ye jante hain ki hum agar hum nahi bolenge hamari jo hai wo wahan pe ek pledge nahi hoga to then in turn hukumat ko kaise pata chalega ki hum kya chahte hain
0: bilkul theek hai to aapka referendum ke bare mein kyunki isse pehle jo referendum hua tha wo 2021 mein 18th october ko hua tha सिर्फ दो ही सवाल थे उसमें
1: जी।
0: एक तो इक्वलाइजेशन का था और दूसरा था डे लाइट सेविंग की जो बात करते हैं बट इस बार जो हो रहा है वो पांच साल के बाद हम देख रहे हैं इसको तो उसमें दस सवाल रखे गए हैं
1: हाँ जी
0: तो टेन सवाल जो है वो उसका अगर सात से ज्यादा सवाल होते हैं तो उसका रिजल्ट जो है वो आपको 48 आवर्स के बाद पता चलता है टेंटेटिव रिजल्ट और इसमें 10 है तो उसका उससे ज्यादा भी लगेगा पर साथ में क्योंकि 10 सवाल हैं तो 10 को वो नंबर 10 जो है उसको वो पहले चेक करेंगे बाकियों को बाद में तो मैं चाहता हूँ आप हमें और इसके बारे में जो जो बताना चाहते हैं बताएं
1: जरूर तो मैंने कुछ
0: समय क्योंकि हमें कम हो जाता
1: है मैंने अपने नोट्स भी रखे हुए कि बाज़ दफा बंदा बात करता है बिकम्स एंथुसियास्टिक एंड सम थिंग्स डू मिस आउट लेकिन जो है वो आई ट्राई टू बी ऑन द सब्जेक्ट एंड नॉट डीरेल माई सेल्फ सो बेसिकली जैसे राजेश जी आपने बताया कि 10 सवाल हैं और जो 10th सवाल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसमें हमें पता चलेगा कि अल्बर्टा को वेदर इट शुड बी विथ कैनेडा और अलहदगी जो है वो चाहते हैं लोग अब ये जो है इन सब जो डब्बे हैं वो 10 डब्बे हैं और स्टार्ट इसी से ही होगा और जो है वो इसकी खास बात इस डब्बे की जो 10वां डब्बा है वो ये है कि इसमें ऑप्शन है ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 जो बाकी 9 सवाल हैं उसमें यस और नो है
0: जी
1: और जो सवाल है अगर हम उनको 3 सेक्शंस में डिवाइड करें एक आम समझने के लिए तो जो पहले 5 सवाल हैं दे आर रिलेटेड टू इमिग्रेशन उसके बाद जो 4 सवाल हैं द अदर 4 बैलेट्स दे आर रिलेटेड टू अदर थिंग्स लाइक हाँ जी कॉन्स्टिट्यूशन पे भी 2 सवाल हैं वेरी राइट जिसे हम आइन कहते हैं उसके भी सवाल हैं और फिर 4 और हैं जो कि आपकी डिस्कस करेंगे नेशनल स्कूल फूड प्रोग्राम चाइल्ड सब्सिडी और ये जो सारी की सारी चीजें अब जाहिर है कि जो इमिग्रेंट्स हैं वो भी मुतासर हो रहे हैं और हमेशा जब भी हम कोई चीज इस तरह की आ जाती है जिसमें कंट्रोवर्शियल कोई जोन होता है सो वी हैव टू रिमेम्बर के व्हाई व्हेन हाउ व्हाट ये सवाल होते हैं जो कि हर इंसान को पूछने चाहिए
0: जी जी जी
1: दैट्स अवर बेसिक राइट
0: तो ये इसमें नॉन बाइंडिंग भी है और
1: बाइंडिंग भी है
0: तो नॉन बाइंडिंग तो जी आप इसमें इसके बारे में और भी हमें बताएं क्या बताना
1: जी देखें ये जो अब इमिग्रेशन वाले सवाल है ना बाइंडिंग और नॉन बाइंडिंग का ये है कि गवर्नमेंट के पास क्या इनके ऊपर काम करने की क्या सलाहियत है और बाकी सब कुछ अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस है ना द ऑब्जेक्शन इज कमिंग ऑल्सो फ्रॉम देयर कि भाई ये तो बिल्कुल ही उसमें सेनेट के ऊपर जिक्र होगा इसके अलावा उस पर यही जो मोर एम्पावरमेंट टू अल्बर्टा गवर्नमेंट है और बीइंग वन ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ कैनेडा ये ऑटोमेटिकली आयन के खिलाफ ही बात जाती है क्योंकि ये कंट्राडिक्ट करती है और जो है ये अदालत का एक मौजू है सो कमिंग बैक टू द इमिग्रेशन सवाल भी जो है वो भी इसलिए है क्योंकि उसमें जो ये हम पीपल ऑफ कलर रंगदार नस्ल उस पे लोग डर रहे हैं कि वेदर वी विल बी ऑब्जेक्टेड टू मोर हेट्रेड क्राइम्स देखे ना अभी ये गुरुद्वारा और मंदिर

0: और मस्जिद और यही चीज है जो हमारी कल्चरल हेरिटेज है हमारी रूट्स हैं हम सब लेके आते हैं यहाँ पे उन पे अगर अटैक हो तो फिर जिंदगी गुजारने का कोई मजा नहीं आता जिससे वी वर प्लानिंग टू कम ओवर विद अवर किड्स एंड यू नो हैव अवर ओन रूट्स अवर आइडेंटिटी और फिर साथ में हम कनेडियन कहलाते हैं और ये बात भी सही है कि इमिग्रेंट्स ने जितना काम किया है फॉर द वेलफेयर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस उसके भी क्या ही कहने
1: बिल्कुल बिल्कुल बड़ा अच्छा आपने हमें समझाया आई थिंक भी अभी टाइम और भी है हमारे पास बट क्योंकि आज हमने दूसरे गेस्ट भी आने वाले हैं तो आप दो मिनट और मैं चाहूंगा भी हमें दो मिनट के अंदर जो भी आप बता सके इसके बारे में
0: राजेश भाई यही है कि एवरीबॉडी माय रिक्वेस्ट टू यू ऑल इज दैट प्लीज खौफ ना खाइए जाइए अपनी बात वहां पे सुनाएं आपका राइट है गो अहेड मेक योरसेल्फ नोन सबसे पहले सेल्फ इंटरेस्ट आता है और सेल्फ लव आता है और फिर ह्यूमन कनेक्शंस आते हैं गवर्नमेंट विल बी फाइंडिंग आउट व्हाट अवर यू नो थॉट प्रोसेसेस इफ वी गो तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सब काम छोड़ के आप 19 अक्टूबर को जाएं और वोट करें हो सकता है आपकी मुलाकात मुझसे भी हो जाए अब तो आपने मुझे देख भी लिया है और 13 टू 17 जो है वो हमारी एडवांस्ड पोलिंग उन्होंने दी है कि कुछ लोग जो नहीं उस
1: आपके घरों में लेटर्स आई हैं उस पे लिखा हुआ
0: लेटर्स आई हुई हैं
1: कैसे कैसे जाएंगे
0: मेल इन बैलेट्स आई हैं तो
1: जिन्होंने मेल इन बैलेट्स बुक करवाया उनके पास वो भी आया और जिनके पास नहीं बुक करवाया तो आपको लेटर आई है वो लेटर लेके जाए और
0: बिल्कुल जी. और वो फैसिलिटेटिव प्रोसेस है और राजेश जी विद द कर्टेसी ऑफ एक्शन डिग्निटी आई वुड आल्सो लव टू प्रेजेंट दिस ये हमारे एक्शन डिग्निटी के जो फ्रांसिस और जून हैं उनकी तरफ से अ लिटिल टोकन ऑफ एप्रिसिएशन फॉर बीइंग द बेस्ट होस्ट एंड द बेस्ट दोस्त आप सब रंग सो ऑल द इंफॉर्मेशन उन्होंने हर जबान के अंदर ट्रांसलेशन करके ये पैम्फलेट बी इन्फॉर्म्ड Be heard, stay heard, cast your vote. तो ये सब हमारी कैंपेन है कि let yourself be known.
1: Very good जी बड़ा अच्छा thank you very much डॉक्टर सोबिया आप प्रोग्राम में आए और बड़ा अच्छा हमें मैसेज दिया तो मुझे लगता है अभी क्योंकि कुछ दिन बड़े हैं तो शायद हम ट्राई करेंगे उसके बाद भी अगर बात कर पाए तो फिर भी हम आपको बुलाने की कोशिश करेंगे और हमारे गेस्ट जो है अभी ऑलमोस्ट 7:30 तो हो गए हैं तो उनका टाइम है और अगर एक दो मिनट और भी कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं मुझे लगता है
0: मैं ये कहूंगी कि देखें ये जो वीकेंड है उस पे हमें अल्बर्टा के वेदर का कुछ पता नहीं होता इट्स फोरकास्टेड दैट मे बी देयर वुड बी अ फॉल स्नो कब तक भागेंगे स्नो से हम
1: जी,
0: भी
1: जी,
0: लेकिन ये है कि सबसे बेस्ट ये भी है कि थैंक्स गिविंग आ रहा है एंड इट्स अ लॉन्ग वीकेंड तो अपने प्यारों के साथ जितना टाइम मिलता है उस तरह एंजॉय करें और हर दोस्त हर फैमिली मेंबर से जो आप डिस्कस कर सकते हैं इसको प्रमोट करें और सारे मिल के जो है वो जाएं और वोट करें
1: बिल्कुल जी इकट्ठे मिलके साथी हाथ बढ़ाना वाला जो गाना है ना वो गाना जी और एक दूसरे के साथ मिलके गाना भी गाओ और वोट भी करो तो 19 अक्टूबर को बेसिकली ये है तो और उससे पहले 13 to 17 जो एडवांस वोटिंग है और अगर आपने पहले मेल इन बैलेट मंगवाया हुआ तो कल उसकी लास्ट डेट आई थिंक
0: 25 सितंबर को गुजर गई
1: हाँ जी हाँ वो सबमिट करना था वो आ गए हैं तो अभी सबमिट करने का टाइम है आई बिलीव
0: बिल्कुल
1: तो वो आप सबमिट करें हमारे घर में भी आया हुआ मैंने कोशिश थी मेरी मैं साथ में लेके आऊँ दिखाऊँ कैसे कैसे होता बट हो सकता है कल या संडे को भी दिखा सकते तो ये है कि अपनी पूरी तैयारी के साथ जाएं और वोट डालें और अपना हक जो है वो वहां पे दिखाएं और कॉम्प्लिकेटेड है बड़ा सिस्टम जैसे आपने कहा उसमें जो पहले 900 वाला जो हमारे दोस्त बताते हैं वो मोस्टली जो है वो नो बोलने वाले हैं ठीक है वो यही बोल कहते हैं
0: रट्टा यही चल रहा है कि नो बोलें आप पहले नो को और जो ऑप्शन पे है उस पे वी रिमेन इन कैनेडा फॉर एवर कैनेडा प्राउड टू बी अल्बर्टन बट फॉर एवर कैनेडा तो ये अपनी जो है वो आप
1: 10th को यस बोलना है नो को नो बोलना है ताकि आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी और उसके साथ में जो ये बता के सारे जा रहे हैं मुझे जो इमिग्रेंट कम्युनिटी के लीडर हैं या जिन लोगों का ये काम है और दूसरी जगह पे बोर्ड लगे हुए हैं बाहर वहां पे लिखा है यस बोलो भी अल्बर्टा को डिसाइड करने दो अब मेजॉरिटी ऑफ अल्बर्टन तो अभी

0: हाँ बोलने वाले हैं तो फिर वो क्या डिसाइड करेंगे, बट आई थिंक वी आर हैप्पी एज ए कैनेडियन. तो मेरा फ्लैग भी कनाडा का है, आपके पास दूसरा भी है,
1: कनाडा और आपके भी यहाँ से माशाल्लाह वेरी नाइस एशियन कैनेडियन मैंने फॉरन लिया. एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी बैक अगेन हियर एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू अनदर सेशन विद यू.
0: थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सोबिया. तो ये नाल ही सीगे डॉक्टर सोबिया. ते एक छोटी जी ब्रेक लेने, ब्रेक तो बाद फिर वापस मिलते हैं. बाकी दी खबरां ते गल्लां पता जेड़ियां ने इसे तरीके ने जारी रहनगे.
2: फीमेल फैमिली फिजिशियन दा स्वागत करता है.
3: गर्मजोशी, समझदारी ते प्यार नाल ओ तुहाडे परिवार नूं कंफर्टेबल ते वेल केयर्ड फील करवाउण लई हमेशा तैयार है.
2: हुण तुसी उनां नाल इंग्लिश, हिंदी, उर्दू ते पंजाबी विच वी गल्लबात कर सकदे हो ताकि तुसी घर वर्गा एहसास महसूस करो.
3: नवे पेशेंट्स हुण एक्सेप्ट हो रहे ने, अज ही अपने परिवार लई फैमिली डॉक्टर सिक्योर करो.
2: कॉल करो 5873606890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक. वॉक-इन्स सवेरे 9 बजे तो शाम 6 बजे तक.
3: सानू मिलो किंग्स व्यू बुलेवर्ड ते या कॉल करो 5873606890.
2: थोड़े परिवार दी सेहत साड़ी जिम्मेदारी.
4: हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब.

0: ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਏ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मघर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप्स तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक।
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
3: नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। लिसनिंग टू कैलगरीज़ मोस्ट पॉपुलर रेडियो रेडियो सबरम 94.7 एफएम।
4: Take your business beyond walls and straight to your audience. Sabrong Radio now comes live to your location, bringing energy, excitement, and real-time engagement. From store openings to special events, from product launches to community celebrations, we don't just promote your business, we create an experience your customers remember. Our team reaches your venue, connects with the crowd, and broadcasts your brand across a wide 250-kilometer network. More visibility, more trust, more customers. Let your business be seen, heard, and celebrated. Book your live promotion today with Sabrong Radio. Your brand, on air and on ground. Visit sabrong.ca or call 403-400-0203.
0: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਏ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca।
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मघर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप्स तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक।
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
5: अपने बिजनेस को दीवारों से बाहर निकालिए और सीधे अपने ग्राहकों तक पहुंचाइए। सबरंग रेडियो अब आता है लाइव आपके लोकेशन पर, जहां होता है एनर्जी, एक्साइटमेंट और रियल कनेक्शन। चाहे हो आपकी शॉप ओपनिंग, कोई खास इवेंट

0: Asia Pacific Immigration Consulting Limited. Student visa, visitor visa, super visa, LMIA applications, family immigration, provincial nominee application, ate citizenship application vich lamba tajruba te maharat rakhda hai. Tuhadi sahulat layi main Maninder Singh Dhillon ate Inderjot Kaur Dhillon ikko chhat het immigration ate insurance diyan sewawan pradan karde han. Sanu sampark karn layi 403-225-1111. Maninder Singh Dhillon, Asia Pacific Immigration Consulting Limited.
1: Regulated Canadian Immigration Consultant.
0: 403-225-1111.
2: From the heart of Calgary to every corner within a 250-kilometer reach, Sabrang Radio is connecting voices, stories, and communities like never before. Whether you're in Calgary, Airdrie, Chestermere, Cochrane, or tuning in from Okotox, High River, Strathmore, and beyond, we are one sound, one family, one Sabrang. Feel the rhythm, celebrate the culture, and stay connected with voices that matter. More events, more stories, more celebrations are on the way. Only on Sabrang Radio, your voice across every mile. Visit our official website, www.sabrang.ca.
3: Regular customer ne, aur Gul bhai, welcome to Sabrang Radio.
4: Aur
3: aapke saath hamare naye guest bhi hain, to unka bhi taaruf karaye hame.
4: नौशीन
3: जी, वेलकम टू सबरंग रेडियो जी. तो आप लोग आए हैं और थैंक यू वेरी मच. तो जी पहले तो आई थिंक भी आप ठीक हो के आए हैं और माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि आपने बड़ी मुझे पता भी प्रोसेस से निकल के गुजरे हैं मेडिकली. अब फिट है, कैसी है आपकी तबीयत?
4: जी ठीक, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का
3: जी. क्योंकि काफी लोग आपके बारे में दुआ कर रहे थे भी आप जल्दी से आए, और हम तो खुद, मुझे बड़े दिनों के बाद मिलके मुझे खुशी आ गई. अभी थी कि मेरा दोस्त, मेरा भाई आ गया
4: जी,
3: वापस मिल गए हैं हम.
4: शुक्रिया बहुत
3: जी. तो आप आए हैं स्टूडियो में, और उससे भी अच्छी खुशी की बात है. तो हमेशा जैसे मैं बता दूं, गुल खान साहब जो है कम्युनिटी के बड़े जबरदस्त लीडर भी हैं और कम्युनिटी वर्कर भी हैं. इन्होंने वॉलंटियर भी करते हैं, अपना काम तो करते ही करते हैं, बट उसके साथ में कई ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, ताकि अपने लिए जो इनको ऊपर वाले ने दिया है उसके अलावा दूसरों को कैसे ये हेल्प कर सकते हैं, उनके लिए क्या अच्छा कर सकते हैं. तो उसी के हवाले से मेरी आज उर्दू ज्यादा निकल रही है.
4: सही है, सही है.
3: तो उसके हवाले से आज ये हमारे साथ राबता कायम करने के लिए आए हैं. पता नहीं क्यों मैं ज्यादा उर्दू बोल रहा हूँ, अभी उनके साथ भी बोला था, दैट्स व्हाई. तो या बट जी, तो मैं चाहूंगा आप शुरुआत, माइक आपके पास है, आपको पता क्या बताना है, आप खुद से ही शुरू करेंगे.
4: जी शुक्रिया राजेश आपका, और अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आपके देखने वालों को भी
3: जी जी.
4: और आज मैं और गुल खान और नौशीन, हम दोनों जो है ऑन बिहाफ आप शौकत हानम मेमोरियल हॉस्पिटल जो है यहाँ आए हैं. 25 अक्टूबर को, इस महीने के संडे वाले दिन
3: जी जी.
4: शाम 6 बजे जो है डेरा बैंक्वेट हॉल कैलगरी नॉर्थ ईस्ट में जो है एक फंड रेजिंग हो रहा है. ये फंड रेजिंग जो है ना कराची में जो है ना शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल, जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है पाकिस्तान का
3: जी.
4: उसके लिए हो रहा है, और उसकी ओपनिंग जो है बहुत जल्द होने वाली है. इससे पहले भी दो कैंसर हॉस्पिटल जो है पाकिस्तान में बने हैं, एक लाहौर में, एक पिशावर में, और ये तीसरा जो है, और ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल है. तो ये जो है ये फंड रेजिंग उसके लिए हो रही है, डेरा बैंक्वेट हॉल यहाँ पे कैलगरी में.
3: ठीक है,
4: 25 तारीख को.
3: वेरी नाइस, बड़ा अच्छा, क्योंकि हमेशा ही आप कोशिश करते रहते भी अच्छे अच्छे काम करने के लिए. और जैसे मैंने पहले भी कहा भी, हमें तो ऊपर वाले ने काफी कुछ दिया है, हम उसमें से दूसरों के लिए भी कुछ करें, तो आई थिंक इससे बड़ी कोई नियामत नहीं होती. क्योंकि एक मैं अक्सर गाना चलाता हूँ पंजाबी में, है हमारे हमायत वस्तिंदर सरताज का है, वो कहता भी अगर तुम किसी की हमायत के लिए खड़े हो सकते हो तो इसका मतलब उसने तुम्हें इस काबिल बना दिया है भी तुम किसी के लिए कुछ कर पाओ. तो हर बंदे के लिए ये काम पॉसिबल नहीं होता, और आप लोग बड़ी डेडिकेटेड टीम है आपकी, आप लोग सब मिलकर ये काम करते हो. तो थैंक यू वेरी मच फॉर कीप डूइंग इट एंड कीप डूइंग इट जी. थैंक यू जी. नौशीन जी आपको दो दो माइक दे रहे हैं, आप भी देखने वालों के साथ साथ में सुनने वालों का भी बोलना हमने
5: जी,
3: क्योंकि हम जी
5: जी हेलो अस्सलाम वालेकुम सबको. और जी जैसे थैंक यू फॉर हैविंग अस फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट टाइम मैं आपके पास आई हूँ जी. जैसे गुल भाई ने बताया कि हमारा इवेंट हो रहा है,

0: शौकत खाना मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल का फंड रेजिंग है और ये हॉस्पिटल जिन लोगों को नहीं पता वो 75% लोगों का मुफ्त इलाज करता है कैंसर जैसी बीमारी का जो जब कैंसर का नाम ही सुने और किसी ऐसे घर में ये बीमारी आ जाए जिनके पास आम खाने को भी पैसे ना हो और उनके दिल पे क्या गुजरती होगी तो ये हॉस्पिटल उन लोगों के लिए एक उम्मीद है और एक बहुत जबरदस्त वर्ल्ड क्लास इलाज होता है वहाँ पे मुफ्त हॉस्पिटल में तो उसके लिए हम 4 सालों से मैं वॉलंटियर कर रही हूँ गुल भाई तो पता नहीं कब से कर रहे हैं तो इसीलिए हम हर साल अगेन एंड अगेन आते हैं क्योंकि हमें पता है कि यहाँ जो भी हम टाइम मनी कुछ भी हम डोनेट करते हैं या स्पेंड करते हैं वो हमें पता है कि सही जगह लग रहा है तो इसलिए हमें हमारे तसल्ली होती है हमें तो दैट्स व्हाई वी कीप कमिंग बैक
1: नहीं नहीं बड़ा अच्छा होता है भी जो लोग भी आपके साथ इन्वॉल्व रहते हैं वहाँ पे तो मुझे पता है बड़ा अच्छा और समझदार सूझवान लोग हैं मतलब ऐसे नहीं है कि भी कोई वैसे ही पैसे फेंकने के लिए लोग नहीं है वो डेडिकेशन के साथ इन्वॉल्व होते हैं उनको पता भी वो क्या कर रहे हैं जैसे आपने कहा तो बड़ा अच्छा कॉज है और इसके लिए सारे पाकिस्तान में क्योंकि तो है ही है सब लोगों को पता और दुनिया भर में लोगों को पता भी शौकत खानम जो हॉस्पिटल है मेमोरियल हॉस्पिटल बेसिकली वो इतना अच्छा काम कर रहा है और कैंसर का नाम सुनते जैसे लोग कांपने लगते हैं कोई भी बंदा कहता है मुझे और कुछ भी हो जाए पर कैंसर ना हो
2: बिल्कुल
1: तो और उसका फ्री इलाज हो तो आई थिंक वो भी एक डेवलपिंग नेशन जहां पे इतनी फैसिलिटीज भी नहीं है और वहां पे बीमारी आ गई तो समझ लो भी आपका काम खत्म है बट फिर भी वहां पे ये अच्छा काम होता है तो 25 अक्टूबर को होने जा रहा है
2: जी
0: 25 को और हमजा अली बासी आ रहे हैं हमारे पाकिस्तान के वो एक बहुत मशहूर एक्टर हैं बहुत डेडिकेटेड काम भी करते हैं बुक्स भी उन्होंने लिखी हैं ड्रामों में और मूवीज में आते हैं जो बल्कि हमारे साउथ ईस्ट के काफी मशहूर से वो स्टार हैं तो वो आ रहे हैं उनसे मिलने का मौका मिलेगा और जबरदस्त इवेंट है बहुत सारे सरप्राइजेज हैं इस दफा हमारे इवेंट में और डेडिकेटेड टीम है बहुत जबरदस्त सारे बड़े डेडिकेटेड होके इस इवेंट के लिए काम कर रहे हैं तो जो लोग आएंगे उनको इंशाल्लाह जरूर मजा आएगा
2: जी नौशीन की बात को आगे बढ़ाते हुए तो एक तो पाकिस्तान से हमजा अली बासी आ रहे हैं इसके अलावा जो है फंड रेजिंग के बाद जो है म्यूजिक का प्रोग्राम भी होगा और हम अब इसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं हमारा जो सिंगर है ऑलरेडी मतलब जो है टोरंटो में है और वो आएगा और इंशाल्लाह खाना बहुत अच्छा होगा लाइव जलेबी फर्स्ट टाइम जो है होगी कि मतलब लोग जो है वो लाइव जलेबी से इंजॉय करें खाना भी बड़ा फर्स्ट क्लास पहले इस सालों में जो है तकरीबन 400 की सीटें होती थी इस दफा हम लोग तकरीबन 500 सीटें जो है उसको कर रहे हैं कि बड़ा हॉल है तो 500 सीटें इंशाल्लाह बिकेंगी 80% जो है बिक चुका है हमारा इवेंट और सिर्फ अभी थोड़ा सा रह गया है तो जो लोग भी मतलब जो है वो हिस्सा लेना चाहते हैं पार्टिसिपेट करना चाहते हैं $100 का टिकट होता है तो ऑनलाइन जो है ले सकता है या हम में से कोई भी जो है हमारे किसी वॉलंटियर से रابطہ कायम करके वो टिकट ले सकता है $100 का या अगर टेबल लेना चाहता है तो 10 आदमियों का टेबल $1,000 का है इसके अलावा जो बिजनेसेस हैं वो स्पॉन्सरशिप में भी हिस्सा डाल सकते हैं स्पॉन्सरशिप जो है वो 10,000 यानी 1,000 से शुरू होती है और 10,000 या ऊपर तक है तो फिर वो उनका जो बिजनेस है उनको भी हम प्रमोट करते हैं तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी उनके लिए भी है
1: वेरी गुड जी बड़ा बहुत अच्छा है जैसे मैंने पहले भी कहा कि गुल भाई जो है हमारे वो मजे हुए प्लेयर हैं जैसे नौशीन जी ने बात को शुरू किया तो उन्होंने आगे लेके जैसे वो स्प्रिंट होती है ना तो पूरी स्टोरी बता दी हमें तो बड़ा अच्छा इन्फॉर्मेशन आई थिंक आप लोगों को पता चल गई होगी सारे पंजाबी भैन भरावान भी दसदा भी अच्छा साढ़े गुल खान साहब तो नौशीन जी शामिल ने जेड़े कि बहुत वधिया प्रोग्राम करते हैं तो शौकत खानम एक ऐसा हॉस्पिटल है कैंसर का मेमोरियल हॉस्पिटल जिथे 75% तो वध लोगों का फ्री इलाज किया जाता है क्योंकि ये जेड़े पाकिस्तान के फेवरेट प्राइम मिनिस्टर भी रहे ने लीडर भी रहे ने ते इमरान खान साहब उन्होंने शुरू किया सीगा ते हुण ये सब तो वड्डा कैंसर का हॉस्पिटल जेड़ा वो कराची च बन रहा वो वास्ते फंडरेज हो रहा

0: जब भी जरूरत पड़ती है अल्बर्टा के बाशिंदे मुत्तहद हो जाते हैं और आने वाला रेफरेंडम बहुत अहमियत रखता है। ये अल्बर्टा के बाशिंदों को अपने सूबे पर ज्यादा अख्तियार दे सकता है। हमारे जजेस की अपॉइंटमेंट ओटावा की बजाय अल्बर्टा करे और हमारे अपने एनर्जी, इमिग्रेशन और समाज की खिदमत पर ज्यादा अख्तियार हासिल हो। 19 अक्टूबर को एक मुत्तहद कनाडा के अंदर एक मजबूत और खुद मुख्तार अल्बर्टा के लिए अपनी आवाज बुलंद करें। विजिट करें albertareferendum2026.ca। इस इश्तिहार की अदायगी गवर्नमेंट ऑफ अल्बर्टा की जानिब से की गई।
1: 94.7 FM रेडियो सुरसंगम हर हफ्ते 20 घंटे सुनो। मंडे टू फ्राइडे शाम 4 to 5 कुलदीप सिंह विचार चर्चा, शाम 8 to 9 जितेंद्र पन्नू। रेडियो सुरसंगम .ca, फोन 403-585-0910। रेडियो सुरसंगम।
2: Whenever you want it, wherever you are, at the palm of your hands, listen to FM 94.7 anywhere with the Fairchild Radio app, available now for free on your device's player or app store, connecting you to the community, anytime, anywhere.
3: अल्बर्टा में संगठित अपराध के लिए कोई जगह नहीं है। हम पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता के लिए $8 मिलियन का निवेश कर रहे हैं, ताकि अल्बर्टा के परिवारों, व्यवसायों और समुदायों के लिए खतरा बने गैंग्स, एक्सटॉर्शन और आपराधिक नेटवर्कों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। यह धन कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अधिक मजबूत निगरानी, खुफिया जानकारी, डिजिटल फोरेंसिक और जाँच क्षमताएं प्रदान करेगा, ताकि संगठित आपराधिक गिरोहों को खत्म किया जा सके और अल्बर्टा वासियों को रखा जा सके। अल्बर्टा सरकार की ओर से एक संदेश।
1: पंजाब तो प्रसिद्ध पत्रकार जितेंद्र पन्नू जी नू सोमवार तो शुक्रवार रेडियो सुरसंगम 94.7 FM ते सुनो। हफ्ते दे 20 घंटे रेडियो सुरसंगम। रेडियो सुरसंगम .ca, फोन 403-585-0910। रेडियो सुरसंगम।
4: The following program speaks to the South Asian community, uniting the world for your listening pleasure at Fairchild Radio, the multicultural spirit of Calgary, CHKF 94.7 FM.
5: टीम इंश्योरेंस कन्फर्मेशन बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दिंदी है, ते ओता पोर्टल भी सेट कर दिंदे ने, ताकि तुसी आप ही कन्फर्मेशन दे सको, बशर्ते तुहाडी इंश्योरेंस एक्टिव है। तुसी आज ही उन्हां नूं फोन करो ते जल्दी तो जल्दी गल करके कोई हल लभो, ताकि अगली बारी तुसी कार टाइम ते आ सको ते बच्चा नाल टाइम भी स्पेंड कर सको। फोन नंबर है मानस पहुजा 5878321208 या रमन वड़ैच 7807530001। सोनिक इंश्योरेंस।
6: मर्सिडीज कार खरीदना चाहते हो? हुण कैनेडा दे विच तुहाडे सुपने सच होण दा समा आ गया।
7: कैनेडा दे विच मर्सिडीज दी सब तो वड्डी डीलरशिप कैलगरी एयरपोर्ट दे नेड़े। मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल पहुंचो ते सिद्धी गलबात करो गौरव शर्मा दे नाल। पंजाबी, हिंदी, उर्दू जां फिर अंग्रेजी दे विच गलबात करो, गौरव शर्मा तुहानू देणगे वधिया सलाह ते वधिया डील्स। मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल्स 70 दे करीब कारां दी डिस्प्ले वाला।

0: 67 35 ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹੀ ਮੌਕਾ ਤੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ
1: ਬੰਗਲਾ ਮੋਟਰ ਕਾਰ ਦਿਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਲਾ ਦੇ
2: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुंचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6476702202 6474702 V23
3: लाइसेंस नंबर 10394।
4: कैलगरी वासियों, की तुसी लंबी लाइना अते डॉक्टर दिया वेटिंग लिस्ट तो परेशान हो, खुद फिकर छड़ो, क्योंकि तुहाडे अपने शहर विच आ गया है सेहत दा असली पहरेदार। ओएसिस स्माइल मेडिकल सनरिज मॉल दे नाल सुपर स्टोर वाले प्लाजा विच स्थित इस क्लिनिक विच तुहाडी अपनी भाषा बोलन वाले मेल अते फीमेल डॉक्टर्स हर कदम ते तुहाडे नाल हन, चाहे गल होवे बच्चा दी या फिर बुजुर्गा दी। इत्थे सारेयां लई सुविधावां मौजूद हन। अपॉइंटमेंट नहीं बनी, कोई चक्कर ही नहीं, सिद्धे चले आओ। इत्थे वॉक ਵਿਚ ਖੁੱਲਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਨਿੱਘਾ ਵੈਲਕਮ। ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ। ਅਸੀਂ ਹਫਤੇ ਦੇ 6 ਦਿਨ ਖੁੱਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਡਾਇਲ ਕਰੋ 587-617-4696 587-617-4696।

जनाब स्टूडियो दी घड़ियां दे मुताबिक समा हो गया जी 8:31 दा 94.7 ते तुसी सुन रहे हो प्रोग्राम सुरसंगम लाइव विद कुकी रेडियो सुरसंगम दे जिंदगी दे रंग रेडियो सुरसंगम दे संग

0: ਸਟੂਡੀਓ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਹਰ ਲੋੜ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 403-947-0060 403-947-0060 ਜਾਂ ਆਓ ਯੂਨਿਟ 530-669 ਸਵਾਨਾ ਬੁਲੇਵਰਡ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ ਪਿਕਸਲ ਫੋਟੋ ਸਟੂਡੀਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਇੱਕ ਵਾਰ
1: ट्रक चाड़न लई थब्बा नोटा दा लगदा है होर ता होर ट्रकां दी इंश्योरेंस बंदे दा धुआं कढ दिंदी है ते दुहाइयां फिर बंदा पौंदा है
0: सुनो ट्रकिंग कंपनियां दे मालक ते ट्रक ओनर जरा ध्यान नाल सुनो ट्रकां दी सस्ती इंश्योरेंस दा हल हुण आ गया ट्रकां वास्ते इंश्योरेंस दे रेट लैण लई सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा नाल 587-832-1208 ते संपर्क करो तजर्बेकार इंश्योरेंस ब्रोकर मानस पहुजा ते उन्हां दी टीम प्रोफेशनल सेवावां दिंदे हन बेस्ट ट्रक इंश्योरेंस रेट्स लई याद रखो सोनिक इंश्योरेंस
1: मर्सिडीज कार खरीदना चाहुंदे हो हुण कैनेडा दे विच तुहाडे सुपने सच होण दा समा आ गया
2: कैनेडा दे विच मर्सिडीज दी सब तो वड्डी डीलरशिप कैलगरी एयरपोर्ट दे नेड़े मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल पहुंचो ते सिद्धी गलबात करो गौरव शर्मा दे नाल पंजाबी हिंदी उर्दू जां फिर अंग्रेजी दे विच गलबात करो गौरव शर्मा तुहानू देणगे वधिया सलाह ते वधिया डील्स मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल्स 70 दे करीब कारां दी डिस्प्ले वाला वड्डा शोरूम सब दा माण सब दी चाहत अपनी सुपनमई कार खरीदने लई गौरव शर्मा नू शोरूम च जाके मिलो या फिर फोन कर लो 403-903-6757
1: मर्सिडीज बेंज कंट्री हिल्स
3: पूरा साल हो गया गाना सुनती नू बस कैलगरी च कार लैण दियां फीलिंग आई लई जायो वीरे दी फैमिली ने भी टोरंटो तो कैलगरी मूव होण दा मन बना लिया है उन्हां दे आउण तो पहलां मैनू कार चाहिदा है
4: मेरी कल ही गल होई है रियल्टर जग्गी ते लोहरा नाल जिन्ना दी सलाह नाल हुण कार इक नहीं दो लवांगे पहला अपने लई ते दूजा तेरे वीरे लई मैं सुनया जग्गी ते लो पूरे प्रोफेशनल तरीके नाल समझांदे है
3: जी हां मैक्सवेल सेंट्रल रियल्टी नाल काम करदे जग्गी ढिल्लो नाल इक वार जरूर गलबात करो जग्गी ढिल्लो दा फोन नंबर है 403-616-2445

0: तो जनाब सुरजीत भुल्लर दे इस गीत तो बाद एक छोटी जी कमर्शियल ब्रेक दा समा हो गया जी
1: नहीं आई टाइम ते ते हुन फिर एक दिन वेट करनी पैनी है ते बच्चियां नु फिर नहीं मिल होना दो दिन
2: ओहो रह गए ना फिर पिछे मैं सुनया है सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा अते रमन वड़ैच ते उना दी टीम इंश्योरेंस कंफर्मेशन बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दंदी है ते ओ ता पोर्टल भी सेट कर दंदे ने ताकि तुसी आप ही कंफर्मेशन दे सको बशर्ते तुहाडी इंश्योरेंस एक्टिव है तुसी आज ही उना नु फोन करो ते जल्दी तो जल्दी गल करके कोई हल लब्भो ताकि अगली बारी तुसी कार टाइम ते आ सको ते बच्चा नाल टाइम भी स्पेंड कर सको फोन नंबर है मानस पहुजा 5878321208 या रमन वड़ैच 7807530001 सोनिक इंश्योरेंस
3: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह 28वीं सालाना सिख नेशन खूनदान मुहिम दा समा आ गया है नवंबर 1984 विच होए सिख कतलेआम दी याद दे विच ए मुहिम हर साल नवंबर महीने दे विच चलाई जांदी है आओ 1984 दी सिख नसलकुशी दे मजलूमा दी याद दे विच एक एक बूंद नाल किसी दी जिंदगी रोशन करिए सिख नेशन दा ए उपराला मानवता दी सेवा चढ़दी कला सरबत दे भले ते निष्काम सेवा दा प्रतीक है कैनेडियन ब्लड सर्विसेज वास्ते कैलगरी वासियां कोल इस वारी 3 बार खूनदान करन दा मौका है 7 नवंबर 14 नवंबर अते 21 नवंबर नू ग्रैंड कॉन्फ्रेंस सेंटर कैलगरी दे विच खूनदान करन लई बुकिंग करवाओ बुकिंग करवाउण लई जां वधेरे जानकारी लई तुसी संपर्क कर सकदे हो बिल कालो जी नू 403-617-9045 ते जां फिर कॉल कर लो तरसेम प्रहार होरा नू 403-701-1308 ते

0: जब भी जरूरत पड़ती है अल्बर्टा वासी एकजुट हो जाते हैं और आगामी जनमत संग्रह बहुत मायने रखता है। ये अल्बर्टा वासियों को अपने प्रांत पर अधिक अधिकार दे सकता है। हमारे न्यायाधीशों की नियुक्ति ओटावा के बजाय अल्बर्टा द्वारा की जाए और हमें अपनी ऊर्जा, आप्रवासन और सामाजिक सेवाओं पर अधिक अधिकार मिले। 19 अक्टूबर को एकजुट कनाडा के भीतर एक मजबूत और स्वायत्त अल्बर्टा के लिए अपनी आवाज बुलंद करें। वेबसाइट पर जाएं albertareferendum2026.ca। इस विज्ञापन का भुगतान अल्बर्टा सरकार द्वारा किया गया है।
1: Whenever you want it, wherever you are, at the palm of your hands, listen to FM 94.7 anywhere with the Fairchild Radio app, available now for free on your device's player or app store, connecting you to the community, anytime, anywhere.
2: ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਗੁਆਂਢ ਵਰਗਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕਸਲੀ ਏਰੀਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਸ਼ਾਪਸ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹਕਸਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁੜਿਆ ਰੱਖਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁਦਰਤ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਹਕਸਲੀ ਦੇ 12 ਸ਼ੋਅ ਹੋਮਸ ਵੇਖੋ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਿਡ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ genesisland.com।
3: 94.7 FM रेडियो सुरसंगम, हर हफ्ते 20 घंटे सुनो, मंडे टू फ्राइडे शाम 4 to 5 कुलदीप सिंह विचार चर्चा, शाम 8 to 9 जितेंद्र पन्नू। रेडियो सुरसंगम .ca, फोन 403-585-0910। रेडियो सुरसंगम।
4: अल्बर्टा में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जुर्म के लिए कोई जगह नहीं है। हम पुलिस और कानून नाफिज करने वाले दूसरे इदारों की मदद के लिए $8 million की सरमायाकारी कर रहे हैं, ताकि अल्बर्टा के खानदानों, कारोबारों और कम्युनिटीज के लिए खतरा बनने वाले गैंग्स, एक्सटॉर्शन और मुजरिम नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। ये फंडिंग कानून नाफिज करने वाले इदारों को मजीद मजबूत निगरानी, खुफिया मालूमात, डिजिटल फॉरेंसिक्स और तकनीकियाती साहित्य फराहम करेंगे, ताकि ऑर्गेनाइज्ड मुजरिम ग्रोहों का खात्मा किया जा सके और अल्बर्टा के बाशिंदों को महफूज रखा जा सके। हुकूमत अल्बर्टा की जानिब से एक पैगाम।
5: Calgary's oldest, biggest and only South Asian radio station, Subarang Radio 94.7 FM.
6: Monday, Tuesday, Thursday, Friday 7 to 8 p.m. Sundays 1 to 5 p.m.
5: Visit subarang.ca.
7: The following program speaks to the South Asian community. Uniting the world for your listening pleasure at Fairchild Radio, the multicultural spirit of Calgary, CHKF 94.7 FM.

0: सही फैसला।
1: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6476072203 6474702 23।
2: लाइसेंस नंबर 10394।
3: कैलगरी वासियों, की तुसी लंबी लाइना अते डॉक्टर दिया वेटिंग लिस्ट तो परेशान हो, खुद फिकर छड़ो, क्योंकि तुहाडे अपने शहर विच आ गया है सेहत दा असली पहरेदार। ओइसे स्माइल मेडिकल, सनरिज मॉल दे नाल सुपर स्टोर वाले प्लाजा विच स्थित इस क्लिनिक विच तुहाडी अपनी भाषा बोलन वाले मेल अते फीमेल डॉक्टर्स हर कदम ते तुहाडे नाल हन। चाहे गल होवे बच्चियां दी या फिर बुजुर्गां दी, इत्थे सारयां लई सुविधावां मौजूद हन। अपॉइंटमेंट नहीं बनी, कोई चक्कर ही नहीं, सीधे चले आओ, इत्थे वॉक विच खुला स्वागत है। नवे पेशेंट्स दा वी निग्गा वेलकम। फैमिली केयर तो लेके मेडिकल चेकअप अते क्रोनिक बीमारियां दे इलाज तक, सब कुछ इक्को छत हेठ। असी हफ्ते दे 6 दिन खुले आ, ते ओ वी देर शाम तक। ता देर किस गल दी, आज ही डायल करो 5876174696 587-617-4496। ओइसे स्माइल मेडिकल, तुहाडी सेहत साडी जिम्मेवारी। 5876174696।
4: हाई क्वालिटी वालियां फोटो चाहिदियां ने, तां फिर पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा कर लो। किसी भी उम्र दियां दो पासपोर्ट फोटो सिर्फ $7 विच, तुहाडे कारोबार जां सोशल मीडिया प्रोफाइल लई प्रोफेशनल हेडशॉट, सुंदर फैमिली फोटो जो सदा लई यादगार बन जावे। साडे तजुर्बेकार फोटोग्राफर लेटेस्ट इक्विपमेंट वरतदे हन तां जो तुहाडियां फोटोआं बिल्कुल परफेक्ट आउण। इह सब कुछ बिल्कुल वाजिब प्राइस ते। पासपोर्ट तों लै के हेडशॉट अते परिवारिक पोर्ट्रेट तक असीं सब कुछ करदे हां। पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा करो। तुहाडी फोटोग्राफी दी हर लोड लई कॉल करो 403-947-0060 403-947-0060 जां आओ यूनिट 530-669 सुवाना बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। पिक्सल फोटो स्टूडियो, जिंदगी दे पलां नूं कैद करदे होए इक फोटो इक वार।
5: ट्रक चाड़न लई थब्बा नोटां दा लगदा है। होर ता होर ट्रकां दी इंश्योरेंस बंदे दा धुआं कढ दिंदी है ते दुहाइयां फिर बंदा पौंदा है।
4: सुनो सुनो सुनो, ट्रकिंग कंपनियां दे मालक ते ट्रक ओनर जरा ध्यान नाल सुनो। ट्रकां दी सस्ती इंश्योरेंस दा हल हुण आ गया। ट्रकां वास्ते इंश्योरेंस दे रेट लैण लई सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा नाल 587-832-1208 ते संपर्क करो। तजुर्बेकार इंश्योरेंस ब्रोकर मानस पहुजा ते उन्हां दी टीम प्रोफेशनल सेवावां दिंदे हन। बेस्ट ट्रक इंश्योरेंस रेट्स लई याद रखो सोनिक इंश्योरेंस 5878321208।
5: मर्सिडीज कार खरीदना चाहुंदे हो? ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਸੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ।
0: ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਕੈਲਗਰੀ 에어ਪੋਰਟ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਬੈਂਸ ਕੰਟਰੀ ਹਿੱਲ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਗੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਗੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹ ਤੇ ਵਧੀਆ ਡੀਲਸ। ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਬੈਂਸ ਕੰਟਰੀ ਹਿੱਲਸ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਰੂਮ। ਸਭ ਦਾ ਮਾਣ, ਸਭ ਦੀ ਚਾਹਤ, ਆਪਣੀ ਸੁਪਨਮਈ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਗੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ 403-903-6757।
5: ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਬੈਂਸ ਕੰਟਰੀ ਹਿਲਸ।
6: ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਗਾਣਾ ਸੁਣਦੀ ਨੂੰ, ਬਸ ਕੈਲਗਰੀ ਚ ਕਾਰ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਾਂ ਲਈ ਜਾਇਓ। ਵੀਰੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਵੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਕੈਲਗਰੀ ਮੂਵ ਹੋਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
7: ਮੇਰੀ ਕੱਲ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਰਿਆਲਟਰ ਜੱਗੀ ਤੇ ਲੋਹਰਾ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੁਣ ਘਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੇਰੇ ਵੀਰੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜੱਗੀ ਢਿੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ।
6: ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਕਸਵੈਲ ਸੈਂਟਰਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੱਗੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਜੱਗੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 403-616-2445।
8: ਓਹੋ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਨੀ ਲੋਡ ਮਿਲਿਆ,
9: ਕੀ ਹੋਇਆ?
8: ਬਸ ਪੁੱਛਣਾ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਨੀ ਮਿਲ ਹੋਣਾ।

0: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। 28वीं सालाना सिख नेशन खूनदान मुहिम दा समा आ गया है। नवंबर 1984 विच होए सिख कतलेआम दी याद दे विच ए मुहिम हर साल नवंबर महीने दे विच चलाई जांदी है। आओ 1984 दी सिख नसलकुशी दे मजलूमा दी याद दे विच एक एक बूंद नाल किसे दी जिंदगी रोशन करिए। सिख नेशन दा ए उपराला मानवता दी सेवा, चढ़दी कला, सरबत दे भले ते निष्काम सेवा दा प्रतीक है। कैनेडियन ब्लड सर्विसेज वास्ते कैलगरी वासियां कोल इस वारी 3 बार खूनदान करन दा मौका है। 7 नवंबर, 14 नवंबर अते 21 नवंबर नू ग्रैंड कॉन्फ्रेंस सेंटर कैलगरी दे विच खूनदान करन लई बुकिंग करवाओ। बुकिंग करवाउण लई जां वधेरे जानकारी लई तुसी संपर्क कर सकदे हो बिल कालो जी नू 403-617-9045 ते, जां फिर कॉल कर लो तरसेम प्रहार होरां नू 403-701-1308 ते।
1: ब्रेक तो बाद फिर स्वागत है जी। खबरां होर भी हैगियां ने, लेकिन जरा क असी याद भी करवा दईए कि कैलगरी शहर दे विच पहली स्नो जिहड़ी है जी सीजन दी वो पैण दे चांसेस ने, ते ड्राइवरां नू कहा गया कि बेनती की जा रही है कि जरा ध्यान नाल ते इस करके हुण अपनी तैयारी जिहड़ी है तुसीं ओह रखो। अलबर्टा दे विच मौसम जां पूरे कनेडा दे विच बदल लिया है, ठंडा मुल्क है, ते इस करके अपनियां आदतां बदलनियां भी जरूरी ने। गड्डियां दा पहला जिहड़ा अपना सिस्टम है उसनू ठीक किया जाए, ते बहुत जरूरी है कि इस वल ध्यान देईए असीं कि इस तरह ना होवे कि असीं घरों निकल पईए ते साडी तैयारी पूरी ना होवे। सो याद करवाया जा रहा है कि अलबर्टा दे विच जो है जी वो मौसम बदल रहा, खास तौर पर कैलगरी वासियों लिए सलाह जिहड़ी है कि तैयारी रखो। कनेडा दे विच विरोधी धिर दे आगू पीयर पोलियाव कंपेन शुरू कर रहे ने अलबर्टा दे विच रेफरेंडम तो पहला कि यूनिटी एकता जिहड़ी आ रखी जाए। वो कहिंदे ने कि अलबर्टा विच मैं रहांगा कुछ दिन, तो जिथे जो आने वाला रेफरेंडम है उस दे बारे मैं कनेडा दे नाल एकजुटता का प्रगटावा करांगा। हाउस ऑफ कॉमन्स छुट्टियां ते है जी, ते एमपीज जिहड़े ने अपनी राइडिंग दे विच वापस जा रहे ने थैंक्सगिविंग वीकेंड ते। पोलियाव अपनी स्पीच जिहड़ी है कैनेडा स्ट्रोंग एंड फ्री मैनिंग सेंटर कैलगरी दे विच अक्तूबर 16 नूं देणगे स्पीच। ते स्केजूअल दे विच पोलियाव दी स्पीच दा की नोट होवेगा द कनेडियन ड्रिफ्ट रीक्लेमिंग कॉन्फिडेंस अबंडेंस एंड फ्रीडम फॉर अलबर्टा। ते इस तो बाद डैनियल स्मिथ भी स्पीच करनगे, ते फिर उन्हां दी मुलाकात किसी खास पत्रकार दे नाल भी होण दी संभावना है। जिसन कैनी भी उत्थे जिहड़े कुछ होण दी उन्हां दी संभावना है। सो काफ़ी सारी हिलजुल है, ते रेफरेंडम नूं लै के जो इस वेले जो जो बनिया होया माहौल बनया होया इहदे बारे असीं आउंदा सारा हफ्ता आप जी नूं इनफॉर्मेशन अपने रेडियो दे जरिए ते सोशल मीडिया जिहड़े साडे प्लेटफॉर्म ने उन्हां दे जरिए आप जी नाल सांझी करदे रहांगे। खैर अलबर्टा दे रेफरेंडम दे विच इमीग्रेशन नूं लै के भी कुछ सवाल ने। यह भी सवाल कि क्यों ना कच्चियां वास्ते हैल्थ केयर ते होर सोशल सर्विसेज जिहड़ियां ने उन्हां दी उन्हां तों फीस चार्ज कीती जावे।